एस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंचा

0: बस ना अले हम लोग
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

पानी को मूल जसरी उम्रियो मनमा कसरी तिम्रो मिठे गाना सोधेर आइपुगे तिमीलाई रोजेरा।

ए सतायो तिम्रै चिन्ताले छैन नि घर तिन्ताले नखोजा मायामा विद्यारथन चल्छ नि संसार मिलेर मन।

कमरे जिम्मा वो खुदी न कही अरु को जोड़ी को नाता न तोड़ू माया को बाटू न मोड़ू।

0: रोज नहीं आइए हम लोग एक बजे का
1: समय को साथ में जितू सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
2: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

0: सुनिए ना, आइए हम लोग आनिमा दिल्ली बाजे कच्छा।
1: इस समय को साथ मा जितु सुनचा दी पसल
2: भुसाल पेट्रोल पंप संगई चुड़िए को डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तरफ जाने बाटो मा कुना को साइड मा
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का घर गहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुंदर हुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

0: সন্দেহ জায়গা ওই নয় তো সাথে এসে পাঠকল চার মেরা অসগর রেডিও আদি খোলে রসাই যাও।
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानी को भोग लायो तपाई यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4 मेगा।

0: सुमित नहीं, आइए हम लोग आने में 6 बजे
1: ए समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे चोड़ी को डिपार्टमेंट स्टोर को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4
3: रेडियो आदि खोला 105.4

एसएस अधिक लाख खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंसा।

0: का लागि स्कूल कलेज सुज साथै लेडीज का लागि स्पोर्ट्स सुज क्याजुअल सुज सेन्डल का साथै सम्पूर्ण किसिम का सस्तो जुत्ता चप्पल को होलसेल तथा खुद्रा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ।
1: पाण्डे सुज सेन्टर वालिङ बजार।